0: बोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: टाइम
2: चेक को साथ में डिजिटल कलर लैब तथा ध्वलामय ऑफसेट प्रेस सोलु दुतु नगर पालिका 5 सोलु कुम्बू

0: सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा
1: हतार में बाटो काट दूस जी हतार भाई एकचोटी दाँत हेन अचोटी दाया तीर हेन
2: एक पोट बाटो काट्दा दाया बाया हेरे सुरक्षित रूप में सड़क पार कर सकिन कि सकिन अंदाज कर बाटो
0: काट तथा टाटा मोटर्स को सहकार
1: पूरी बचत पूरे कायदा।

साथी का योग्यता प्रमाण पत्र नागरिकता अनुभव भए सोको प्रमाण पत्र को फोटोकपी दुई प्रति दरखास्त विद्यालय में सूची दर्ता करना गालवास 2019@gmail.com में ईमेल कर पठान सकने थप जानकारी को लगी संपर्क नंबर प्रधान अध्यापक विनोद सिंह तामाङ 98 92 6 53 52 संस्था प्रतिनिधि डिरेक्टर अफ पार्टनरशिप एण्ड गवर्नेंस शांति शेर्पा 98 51 18 73 82 संस्था प्रतिनिधि एजुकेशन सर्टिफिकेट लीडर छिरिंग तामाङ 98 51 17 43 81 श्री गार्मा माध्यमिक विद्यालय सोनी तुकुंड नगरपालिका साथ सोलखुम्बु।

0: 설정 불합격 여러분과 이스터의 도시 예세호 상으로 퍼지도록 하이.
1: सूचना सूचना सूचना सुरुंग झील देश जोड़ने सड़क निर्माण कार्य हाल सुरुंग क्षेत्र संचालन भैर निर्माण कार्य का क्रम में मथुली सुरुंग ढुंगा खस्ने संभावना रहता तल्लो फेरा प्राथम क्षेत्र में घासपात काटने गाई बस्तु चलाउन तथा आवत जावत करने पूर्ण स्थानीय वासी तथा सर्वसाधारण सावधानी अपना इसी सूचना मार्फत अनुरोध कर जोखिमयुक्त क्षेत्र में अनावश्यक रूप में न जानु आपका बाल बालिका तथा चौपाया समेत सुरक्षित राखी सिविल झील गोष्ठी उपभोक्ता समिति यौनी हिंसा सामाजिक अपराध हो बाल बालिका यौनी हिंसा को जोखिममा हुन सक्छन् हिंसा समिति असन्तोष साथीलाई परिचित नदीबाट जोखिमबाट हुन सक्छ अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीको व्यवहार ख्याल राखौं बाल बालिकाको चालचलन बानी व्यवहार अस्वाभाविक परिवर्तन आएको हुन सक्छ त्यसको पनि उनीहरूसँग तत्काल कुरा गरौं बाल बालिकासँग नियमित सम्पर्क गरौं आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय उत्तर प्रदेश द्वारा जनहित

0: Saiu rádio solo é
1: Solo FM 101.2 MHz. Usual bhavishya ko lagi hamro abhiyan.
2: Sanchit. Solo FM. Studio time.
3: It's 8 AM. Bihatko aajbajera.
1: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा बड़ा माई ऑफसेट प्रेस सोलह दुतु नगर पालिका 5 सोलह कुंभू

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड को मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उपलब्धता को मिलन चुकी
1: का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रहरी उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ रो
2: अफ रोड का उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया दर्शन बजार में लंच भैर
2: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का अति उपयोगी
1: हमारा सेवा
2: उखल ढुंगा खोटांग डिजिटल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित ढुंगा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुक मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट और सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुगतान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: उपभोक्ताको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भिजाई उखलढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852880222 र 9842380300
0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटरसाइकिल तथा स्कूटर अब उखलढुंगा को मिलन चुकी
1: होंडा का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रहरी उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ रो
2: अफ रोड का उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया दर्शन बजार में लंच भैर
2: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का अति उपयोगी
1: हमारा सेवा
2: उखल ढुंगा खोटांग डिजिटल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित ढुंगा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुक मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट और सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुगतान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: उखल ढुंगा को लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गुरुमारे भिजाई
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852880222 र 9842880300

0: বন্ধু, তুমি তো বিদেশে লাগে রে। হে দিদি, টিকা দেখা গেল শুরু করার পয়সা চলে না, অনেক তো ঘর চালানো সাহায্য গাড়ে গে। বিদেশ গায়ে বসে তো এসে দু চার পয়সা কমিয়ে হয়েছে কি ভালো না দিদি? বিদেশ সাড়েমা কাহা রাম্রো হচ্ছে রে মঞ্জু? অস্তি ভর্খর আমাদের কাকাকে ছোড়ি অঞ্জলিলাই বিদেশ গেক এক হপ্তা নিয়ে উদ্ধার করে ল্যাকে থাকছেন তিনলাই? তুমি পনি বিচার গর এই বিচার গর জানানি ভয় বুঝলে মাত্র যাই খেয়ে কে জানি জানি দিদি।
1: रोजगारीको लागि उच्च शिक्षाको लागि र विदेशी नागरिकसँग विवाह गर्न जाँदा पनि बेच बिखरमा पर्न सक्ने जोखिम हुन सक्छ। यस्ता जोखिमहरू आउन नदिन सतर्क रहनु र बुझेर मात्र विदेश जाउनु।
2: नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर, हाम्रो प्रतिबद्धता पेट्रोलियम पदार्थमा शुद्धता। यहाँबाट डिजल र पेट्रोल तपाईँले भनेकै समयमा तुरन्त उपलब्ध छ। सम्पर्क व्यक्ति परशुराम तामाङ 9847-87-35-19, समुद्र साक्य 9861-83-35-34, टेलिफोन 0385-20-43। नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर प्रोपाइटर तोरण कुमार श्रेष्ठ 9862-82-13-87। नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सँगै यूआई स मोटर पार्ट्स एण्ड सप्लायर्समा सम्पूर्ण गाड़ी मरमत सम्बन्धी सेवा उपलब्ध छ। यहाँ साना तथा ठूला जुनसुकै गाड़ी मरमत गरिन्छ। सम्पर्क रमिला श्रेष्ठ 9862-93-06-46। नमुना दुधकुण्ड आयल फर्म स्टोर सोलु दुधकुण्ड नगरपालिका साथ गारमा थोर बौद्ध सुलिखु।
3: बाबा, म आज स्कुल जाने मन छैन, आज जाने है?
4: होइन,
3: यतिकै जाने मन लागेन।
4: यतिकै पनि हुन्छ?
3: मैले साइन्सको कन्ट्रे गर्न सकिनँ, सरले हुन्छ।
4: ए, कुरा त्यस्तो थियो, जाएन, म पनि तिमीसँगै जान्छु। नमस्ते म्याडम, म रिना गुरु।
0: नमस्ते, कति टाइम निकाल्नु भयो?
4: आज रिनाले यसको जान्न भन्यो, साइन्सको कन्ठ गर्न सकिन अरे, सरले बित्नुहुन्छ भन्दै थिए।
0: ओहो, हो र हजुर आएर राम्रो गर्नुभयो। विद्यार्थीलाई कुट्न तर्साउन कहीँ पाइन्छ र विद्यार्थीलाई शारीरिक तथा मानसिक सजाय गरी एक वर्षसम्म कैद र 50,000 जरिमाना हुन्छ। म साइन्सको सरलाई सम्झाउँछु, रिना तिमी क्लासमा जाऊ त, सरले केही गर्नुहुन्न।
2: हस् म्याडम। नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

0: 있다고 쳐요.
1: अब विदेश को खबर अमेरिका को लस एंजलस नजीक सीमी भाई क्षेत्र में ठूल डड़ेलो फैलिएको छ। घासे तथा झाड़ी क्षेत्र में लगे डड़ेलो तीव्र हावा का कारण फैलिदा हजारों बासिंदा विस्थापित होने जोखिम छ। कतिपय घर छोड़ने पर्ने अवस्था छ। डड़ेलो फैलिए निधन अग्निमंत्रक लगी पड़ेगा। लस एंजलस को डाउनटाउन क्षेत्र झंडे 40 माइल अर्थात 60 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में रहकर सीमी भैली में डड़ेलो लगे हो। 1,25,000 जनसंख्या रहकर तो क्षेत्र में आगो फैलने स्थानीय प्रशासन र अग्निनियन्त्रक निकायले उच्च सतर्कता अपनाएका अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। क्यालिफोर्नियाको अग्निनियन्त्रण निकायले अहिलेसम्म मानवीय क्षति नभएको जनाएको छ। त्यसै गरी उत्तरी लस एन्जलसका विभिन्न आवासीय क्षेत्रमा पनि मानिसलाई सुरक्षित रहन र पूर्व तयारी गर्न भनिएको छ। पछिल्ला वर्ष जलवायु परिवर्तन लामो खडेरी र अत्यधिक गर्मीका कारण वन तथा झाडीजन्य डढेलो र आगलागीको घटना बढ्दै गएका छन्। क्यालिफोर्निया हरेक वर्ष आगलागीको चपेटामा पर्ने क्षेत्रका रूपमा चिनिँदै आएको छ। अब खेल खबर। आईपीएल क्रिकेट में आज राजस्थान रॉयल्स र लखनऊ सुपर जायंट्स ने खेल यह खेल नेपाली समय अनुसार बेलुका 7:45 जयपुर में शुरू होने अंक तालिका में राजस्थान 12 खेल में 12 अंक का साथ पांच र लखनऊ समान 12 खेल में 8 अंक सहित अंक तालिका को पुछार में जुवाई को खेल में सनराइजर्स हैदराबाद ने चेन्नई सुपर किंग्स हराई प्लेअफ में पुगे। उज्यालो रेडियो नेटवर्क काठमाडौँमा 90 MHz बाट प्रसारण भइरहेको दिउँसो 12 बजेको नेपाल खबर सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीश शर्माको कार्ययोजना र उजुरी अध्ययन गर्न विपक्षी दलले समय मागे। आज उजुरीकर्तासँग छलफल गरी शर्मालाई बोलाउने

0: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।
1: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय हुंडा ब्रांड की मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उखलढुंगा को मिलन चुकिया। हुंडा का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ रो
2: अफ रोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया दर्शन बजार में लंच भैर
2: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी। उखलढुंगा र खोटाङ को डिजिटल बजार फाइनेंस को सुविधा सहित हुंडा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुकी मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स पाइन का साथ ही सर्विस सेवा
2: एक्सचेंज को सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बुकिंग करी भुगतान करे में होम डिलीवरी को सुविधा समेत रहने।
2: उखलढुंगा को आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गुरुमारे
1: संपर्क नंबर 0375902222 9852888002222 98 42 80 300।

0: नेपाल में सर्वाधिक बिक्री हुई अंतर्राष्ट्रीय होंडा ब्रांड की मोटर साइकिल तथा स्कूटर अब उखड़ा को मूलन चुकना
1: का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ रो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया भर्सन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सब उम्र समूह कर्मचारी तथा व्यवसाय प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखल ढुंगा र खोटाङ को डिजिटल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित ढुंगा का सब मॉडल का मोटरसाइकिल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुकी मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निःशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुगतान गरेमा होम डेलिभरीको सुविधा समेत रहनेछ
2: ओखल ढुंगाको लागि आधिकारिक विक्रेता होट मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिचरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाङ ओखल ढुंगा
1: सम्पर्क नम्बर 037590222 9852880022 र 9842803000

0: ओल्ड कॉलेज शांत तथा अनुशासित शैक्षिक वातावरण उत्कृष्ट भौतिक पूर्वाधार दक्ष शिक्षक शिक्षिका आईएसओ सर्टिफाइड अतिरिक्त क्रियाकलाप साथ ही यह कॉलेज ने विद्यार्थी में रहकर अंतर्निहित प्रतिभालाई पहचान करी उजागर कर मदद करते आक न्यूनतम शुल्क गुणस्तरीय शिक्षा मनासुन वर्ल्ड कॉलेज साबुन सुसीपाती संपर्क नंबर 9813623882 9813623287
1: युवा कृषि पर्यटन मार्फत समृद्ध मध्य दूतकोशी समावेशी विकास का आधार उत्पादन रोजगारी का पर्यटन को केन्द्र मध्य दूतकोशी को समृद्धि मध्य दूतकोशी गाउँपालिका सोलुखुम्बुको सहकारीमा उत्पादित रेडियो कार्यक्रम समृद्धि हरेक महीना को दोस्रो बिहीबार साँझ 7:30 देखि 8 बजेसम्म सुरु एफएम 101.2 मेगाहर्ज अनलाइन र सुरु एफएम को पेज मार्फत विश्वभर सुन्न सक्नुहुनेछ।

0: टोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागी हम अभियान
1: संचय सूर्य एफएम स्टूडियो टाइम
2: 3 PM न्यूज को 3 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ध्वनामय ऑफसेट प्रेस सोलू दुतु नगर पालिका 5 सोलू कुंबू
2: यो समय किसान पाल प्रोडक्ट्स प्रालीको हो
1: राष्ट्रको स्थान किसान
2: अ कम्प्लीट फाइटिंग सोल्युसन्स

0: आशीर्वाद हित बिक्री हो अंतर्राष्ट्रीय गुंडा दान को मोटर सकल तथा स्कूटर अब उखड़ा को मिलन चुकना
1: का विशेषता
2: जापानीज ऊर्जा प्रविधि उत्पादित
1: उत्कृष्ट माइलेज
2: राम्रो रिसेल मूल्य
1: टिकाऊ र भरपर्दो
2: अफरोड का लागि पनि उपयुक्त
1: BS6 तथा नया नया वर्षन बजार में लॉन्च भइरहेको
2: सबै उमेर समूह कर्मचारी तथा व्यावसायिक प्रयोजन का लागि पनि अति उपयोगी
1: हाम्रा सेवाहरू
2: ओखलढुङ्गा र खोटाङ को डिक्चेल बजार बाटै फाइनेंस को सुविधा सहित हुन्डा का सबै मॉडल का मोटरसाइकल तथा स्कूटर कंपनी के मूल्य में पाइने
1: जिनसुकै मॉडल का जेन्युइन पार्ट्स का साथ ही सर्विसिंग सेवा
2: एक्सचेंज गो सुविधा सहित मोटरसाइकिल तथा स्कूटर खरीद गर्दा एक सेट हेलमेट र सर्विस सेवा निशुल्क दिइने
1: अनलाइन बाट बुकिंग गरी भुगतान गरेमा होम डेलिभरी को सुविधा समेत रहनेछ
2: उपभोक्ताको लागि आधिकारिक विक्रेता होप मल्टीपर्पज सर्विस प्राली सिद्धिशरण नगरपालिका 11 गोरुमारे भुजाङ उखलढुङ्गा
1: सम्पर्क नम्बर 0375902222 9852988002222 र 9842808300

0: उज्ज्वल एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्ज्वल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: Soundcheck. Sorry, I'm fine. It's your time.
2: It's 4 p.m. And I'm not going to charge you.
0: Time check को साथ में New Star Digital Color Lab तथा Dwaramai Offset Press. सोलु दुपहर नगर पालिका 500

0: speaks to your heart. Bolu FM 101.2 MHz.
1: TWR Nepal Nesu Jau Margo Darsan Radio La Dasidile Jai Masi. जी क्यों मोबाइल डाकी शिंकिंग तंग दुखी परलासन निजे के त्यंदो क्लियाम के निदिनी लियाम के निद्वाबीन
2: तेजी बोले वो निश्चित तेजी से रोते वाला भागों में दुपट्टा सजेंगे पलाव निश्चिना मुझे समझने की सुनी दुकान जैसे लिंग जानो भाग जाते से लिंग की सुनला मताना वाव इन नशे जाते वाला मानों बामुशलाई तेजी बोले वो निश्चित दुतामला उसे लिंग जान की मुझे घूमी तान लिंग जान मुझे बोला ना दासा घूमना जमी मैं मांग में जी पड़ा कौन जो कि हारा कुंजी से लिंग जान दया जाओ मलाम की मैं खोई की बुंदे सुतान कुछ लक्षण समझो कौन जो कि मैं कौन जो कि लिंग जान में भी नहीं चला सिखाओ भी लिंग जान में सिर्फ नियंत्रण की ताम रहे हमारे भी लिंग जान में सिर्फ ना घमला मैंना कहाँ क्या कहाँ क्या ना गिरा मातू हमारे मातू घमला वाणी हमारे तीन बुला हो तो सुचा नहीं थी थोड़ा मैं पर तीन जीनी सिखाए यीशु क्रिस्ट की पंगना किए में ज्यादा चल जीव हमारे नियंत्रण नियंत्रण से तो वही सुनी जब जीव लाने चाहिए कहाँ भी कौन जो कि तीन दिन लाओ तो बुजुर्ग जीव कहाँ भी तीन दिन चंच जो लाओ तो कौन जो कि जुटते हैं बुजुर्ग दया दी बलशी का मारे सिंह मीठा मारे सिंह कहाँ दी कहाँ दी नला दी दासी ने दिया फिर जा नहीं हमारा सोचा नहीं नला वितम ये की तम नला ना हिंदू मुला मीठा पूरी दिल्ली में पड़ती है ना सरकार जमी घूमा घूमला लानी देती है भूखार में जो अंगनी ना क्योंकि छासे ले हम छालो आना यह की दिल्ली सुनती के लिए जंगवाता सीमी नहीं हमारे की खोया छकारा लाख बजानी सिखा सुन नींदा यह की दिल्ली भूतां भूला रहने में पड़ जाएं पापा भी हम बंदा नींद से मना लीजिए हमारा छह मची रही है दुख सिखा रही हूँ हमारा मगर की हो तो बल्ला हम उनकी भूला कौन देगी थोड़ा में की रक्षी माँ हम उनकी सिर्फ बताओ दुख सुन भूला यह नीतवा रे रे जानी न पड़ जाएं यानी मलसम में बच्चे हो घूम जाएं कि ग्वामी की कामी नियम पर जामी नीचा के लिए कौन जगह छुट्टियों में की चर्ची सुन विभिन्न यह सब कौन जगह छासे हाले लाजाएं सब पहले दुगर निमामु चिकुटे खेल चले हाले लागला बुकोट बुकोगरी नियम सुन सुन बुकोट की लागा भी नियम लूंगा या मजमा सुन सुन नाजी की लाम में सुन जानी कहीं खाम बलों को पड़ना हम बलों में पर जामी के पास चंदा ले सुन कि पास कर भी छासे लाजानी हाले लाएंगी थोड़ा नाम सुन सुन कि हम लूंगा होता भी नहीं सुग्र सा नहीं सुन उत्तराने किन्हीं में लबुने मनीता ना हमारे पर जासना मनीता सुधरते ही तो ना हमारे आमंदी या मंदी दया हमारे इन सब में उतारना सही लाना मेरे पास हासना तुम्हें इनकी सिखाना मेरा छात्र ऐसा क्यों ना है मेरा छात्र तेरे के काम की मोटा वही मनीता तो नहीं है मगर आज आज क्या हुआ मेरा कि क्यों चलो लाया कि विषय बिजी मैं निजी छात्र साथ में मिला मैं लोकल जी को बिने जिनकी सिंगल हूँ हम कौन जी बोलो तंगा हम ये दुकान की चेंज दो चेंज लो लाया कि नाम का मातम है क्योंकि हम ये नहीं ना महा को तो जी ना कौन जी की टीम आई वैसे तो ही बोले ना फिर देखा मुझे ही ना जब कौन जी की नहीं ना मुदा कौन जी की सुन लो बोला आई वीडियो जो सब पला बैठी हूँ मुझे चार से मुझे अंग दूर कर ला नहीं सुन ना आई हम ये नहीं जी तुम्हें बगरे में विधि शरीर तुम सब आई बैठी वाला बैठी वाला ना लोग सी माती तो मती सी माती कौन जी की लेन लोगों निशान कौन जी ऐसे भी सुन सुन की मरा छने कहाँ के ऐसे छने ला रही हूँ कहाँ ये हैं तुम जी कौन जी की विधि में चांगो जहाँ बोला मरा छासे का ले सुन सुन हमारे कौन जी की सुन बैठ ना नहीं देख ला ना जा आई दिले निया मुझे नम से जो मुझे कौन जी की सुन न्याय जी सुन गीता भी कौन जी की सुन की दवाई ढाकू नीची दवाई ऐसे खरीद दिलमला देखनी मांसू विधि छासे की लंतानी विधि कौन जी की सुन न्याय ना समझ गया ही तेरी शराबी कौन जी की सुन की वो ले अपना चोखा से वासी हाँ कोठी सी व्यक्ति वा मंडलला बन बिंचू मिला लाई की व्यक्ति वाला नीलानी छोटी पंगना बिंचू हमें व्यक्ति वा ना समझते हैं बिंचू हमें व्यक्ति वा सुनी काम दो वाय न्याय जी की थोड़ा पंगना थोड़ी वाय कौन जो से कुछ ले से सुन हमें शेयर में भी सुन ब्लास में कौन जो मरला में जो मुला जूनी लोग जाचन ना देख सुन क्योंकि अन्य ऐसी लड़की नहीं तो नहीं वाला किसे नहीं जूनी नीचे गई हमें कौन जो सुन भी ऐसी नहीं जान सीधे भी लोगों ने जानी घूमने काम तन्ना चंदी वाय खुर्सान बैठी दुतरा को इंजिन न बैठियोला की चंगी थोड़ा भूलने में न छासे गाओ भूखज बसुन बमने जीन भूंगा दासा बनी रह सीखा दीन नमत तुक्याने नी बला कंजे की लीन लानो कंजे की लीन में मुचुल लाखड़ी नहीं जाएं उनकी ये कंजे ऐसे न मौजा आसीमा नीजी नीजी लेने ये निचों चुसुम भूलने की कंजे ऐसी दे मुतुकी कंजे इन न सीन हाफ उचुसुम रुको लाम जाते कंजे की लीन लाम की लागनी रुकोने की लीन लाम दे जीवन नीजी नीजी तेरे जीवन में नगनी कंजे ऐसे रंग मुझे तो सुनते नीजा मैं ये तुम्हें भागकुल नीजा मत रुके कंजे ऐसे मुझे ना सुने मैं मार्किंग डेटी वाला शरीर छप्पा नीनी नीसी जो जी कंजे डेटी मलतान निकला मैंने दागुं मलारा घुमाए कंजे ऐसे दागुं मला घुमी भागकुल नीला डाले क्या ना मुझे मैं दागुं जुपुजी आता तब मैं मालस्तेन की मिलन ना आती मिलन गई, हमारे चीजी मालस्तेन की नहीं, जैसी भी तेरा कौन जगह सुन दी ले मैं जन्ना है कौन, कैसी जगह ले मैं जी जैसी होती है काम, इन्हें ये उन्हें वो इन्हें तमाशे में सारे जंतु काम, उन सब कैसी जगह ले जी सुन, जैसी वो जैसी होगी, नेत्री जेमा जिन्हा कुछ भी सुनी नमः पर चाहते रहें नमः यीशु कौन जो प्रतिष्ठे हारिं जय निचोजी कौन जो की लीन जामनी जो कौन जो तेरी की मार प्रतिष्ठी सुनती मैंने कहूं वो देख दिले जिन्हीं दिनों चिवाती ला मलानंदी

0: सांस्कृतिक तथा जातीय विविधता बीच एकता को आवाज
1: सुन FM 101.2 MHz
0: सूचना शिक्षा र मनोरंजन को अपूर्व संगम
1: सुन FM 101.2 MHz
2: उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
3: Soundcheck. Studio time. It's 7.

0: गोलू एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्जवल भविष्य को लागि हाम्रो अभियान
1: टाइम चेक सोलू एफएम स्टूडियो टाइम
2: इट्स 8 पीएम रात को 8 बजे
0: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा ज्वालामाई अफसेट प्रेस सोलू दुतकुंड नगरपालिका 5 सोलू खुम्बू

0: टोलु एफएम 101.2 मेगाहर्ट्ज उज्ज्वल भविष्य को लागी हम अभियान
1: Soundcheck. Studio time. Studio time.
2: It's 9 PM. Ratko 9 baje.
0: Time check ko saath ma. New Star Digital Color Lab tatha Dwaramai Offset Press. Solu Dutu Nagar Palika 5 Solu Khumbu.
3: Priya Shrota. Aba Prasaran Hudeisa. TWR Nepal ko prastuti. कार्यक्रम मार्गदर्शन कार्यक्रम सुनेर आश्वस्त हुनुहोस्।

स्रोत में महिला शिक्षित आवश्यकता संबंधी सूचना इस गार माध्यमिक विद्यालय में क्लासरूम्स इन द क्लाउड मिसाल को अनुदान तलब भत्ता उपलब्ध कराने करी निजी स्रोत में प्राथमिक तृतीय तह महिला शिक्षक आवश्यक भाई विहाय का योग्यता पुगे इच्छुक उम्मीदवार पूर्वक दरखास्त आह्वान कर पद महिला शिक्षक तह प्राथमिक तृतीय पद संख्या एक जना पद को किसिम निजी स्रोत सीआई

0: Township. City FM. Studio time.
1: 10 p.m. रातको 10 बजे.
2: टाइम चेक को साथ में न्यू स्टार डिजिटल कलर लैब तथा द्वारा माई ऑफसेट प्रेस सोनू दुपुन नगर पालिका 5 सोलू कुंडू.